याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: हला हे दिलिया नी हमाला दिले वेले नी खाती हाले हमाला दिले आले खाती हला हे के दिलिया मेना बाहले हेले वेले लो असुत बाना खड़ा वाली बाहे मेने ले दिलिया हला हे सोए ना वतल दिये ना असुत बाना येशु स्वाहां से के नाम एन पले आओ
1: ही
0: हमाला के दिया ले हमा तेरे
1: बे दे दे नो वाहिदा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबरे सुदी वेवा स्वामी वहांस ओबांस उदाउ करान ने किने कनाता

0: श्रीवेवा।
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिन्म सुविशुद्धे सिलु सुविशुद्धतावे उल्पत वहांसे में एहिन वहांसे के आत्मेनंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवत करण में नपियादि अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन वने येशुस क्रिस्तुन वहांसे के श्री शरीरयात श्री रुधिरयात बावट पत्वनु संदहाय उन्वहांसे दुख सहित मरणेट सिय कमेत्तेन पू कमेत्तेन पवरादीमेट पेर पूपे रागेन वहांसेट तुति पुदा एक खड़ा मिसे कीमिन सिय श्रावकेंट दुन सेक ओब सम मेन केन अनुभव करन्न सबबिन्म मे ओब उदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीरयाई रात्रि भोजने वलंदु पशु उन्नांसे से कुशलानंद रैगने नावत तुति पुदामे से केमिन से श्राव के इंट दुन सेक ओब सम मेन गेन पाने करन सबविन्म में अभिनव वूद अनंत वूद गिविस में मागे रुदिर कुशलानाई पौकमाव संधा गौदेश साद सियल मनुष्य अनुदेश सादे वगुरुन लबन्ने मास्ते किरीम पिनिस में सिदु करान्ने